0: गई हो। रिवायती खानों की खुशबू फ़जा में फैली हुई थी, कहीं मछली पक रही थी, कहीं आइसक्रीम, कहीं बर्फ़ के गोले। कुछ लोग रिवायती जापानी योकाता और किमोनो में मलबूस थे। गरज बहुत गहमा गहमी थी, लेकिन फिर भी कुछ मिसिंग था, और यही चीज़ मुझे हैरान कर रही थी।
1: यही तो हना भी होती है, और क्या होना चाहिए था जिसे आप ढूंढ रहे थे?
0: खदीजा साहिबा, कोई कचरा ही देख लेता, कोई खाने का टुकड़ा, किसी बच्चे की गिरी हुई आइसक्रीम की छींट, कुछ तो ज़मीन पर नज़र आना चाहिए था ना। इतना बड़ा हुजूम, लाखों लोग, इतने बच्चे आइसक्रीम खा रहे थे, मगर ज़मीन साफ की साफ। मैं ढूंढता रहा, लेकिन कचरे का एक टुकड़ा भी नहीं मिला।
1: अरे वाह,
0: और एक और बात, इतने बड़े हुजूम को संभालने के लिए हमारे यहाँ तो न जाने कितने लठबरदार पुलिस वाले चाहिए। यहाँ एक आध पुलिस वाला मेगाफोन हाथ में लिए इंतहाई अदब के साथ हिदायत दे रहा था, और लोग खामोशी से अमल कर रहे थे, न धक्कम पे न शोर शराबा।
2: दोनों तरफ तावन।
1: हाँ जी, और आतिशबाजी देखने का मौका भी मिला, या आप यही सब देखते रहे और वक्त गुजर गया?
0: नहीं, आतिशबाजी साथ साथ एंजॉय कर रहा था, लेकिन आतिशबाजी में भी एक बड़ा फर्क है। यहाँ आतिशबाजी बाकायदा एक फ़न है, बल्कि ये फ़नकारों के दरमियान मुकाबला था। आसमान पर मुख्तलिफ शक्लों और रंगों के फन पारे बनाए जा रहे थे आतिशबाजी के ज़रिए। मुझे वैसे सबसे खूबसूरत सूरजमुखी के फूल का डिज़ाइन लगा।
2: अरे अब तो आतिशबाजी ख़त्म होने वाली है, मुझे ये बताइए वापसी पे कामयामा साहब को कैसे ढूंढना? मुश्किल तो हुई होगी।
0: मैंने तो खूब मज़े से आतिशबाजी देखी, लेकिन कामयामा साहब ने फ़ोन पर बताया कि वो कुछ ख़ास देख नहीं पाए।
2: अरे वो क्यों?
0: जबकि जहाँ जहाँ से नज़ारा मुमकिन था, इंतज़ामिया ने पर्दे लगा दिए थे ताकि सड़कों पर रश ना बने, और वापसी पर उन्हें ढूंढना भी आसान नहीं था। इसलिए मैंने सोचा ट्रेन में ही आफियत है। लंबी कतार में हाथ में बर्फ गोला लिए आराम आराम से चलता हुआ ट्रेन तक पहुँचा, और यूँ रात गए जापान की एक और खूबसूरत याद समेटे घर वापस पहुंच गया।
1: वाह वाह, क्या दिलचस्प दास्तान है।
2: ये दास्तान थी जापान जो मैंने देखा। और सामिन, अब घड़ी की सुइयां इशारा करने लग गई हैं कि अब छोड़ें दास्तान और लें आपसे इजाज़त।
0: जाने से पहले बताते चलें कि सामिन, आप हमारे होम पेज nhk.jp के जरिए हमारी खबरों और प्रोग्राम सुन सकते हैं, और हमें अपनी आरा भी भेज सकते हैं।
1: अच्छा, हमारा होम पेज है nhk.jp/urdu।
2: आप हमें तहरीरी पैगाम भिजवाने के साथ साथ ऑडियो या वीडियो पैगाम भी भिजवा सकते हैं। हमारे होम पेज का एड्रेस एक बार फिर सुन लीजिए, एड्रेस है nhk.jp/urdu। हम आपके ढेरों पैगाम के मुंतजिर हैं, और अब NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस के मेज़बानों वसीमा आबिद, खलील शिराजी और खदीजा शाह को इजाज़त दीजिए।

ये NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: यह है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का आपके मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देश से। मैं उगते सूर्य के देश से सबसे पहले स्वीकार करें अपनी सखी शांग्रीला जैन का कोनिचिवा नमस्कार और आदाब।
1: सभी दोस्तों को कामायनी सिंह का भी कोनिचिवा नमस्कार। फिर आया एक नया सप्ताह और साथ ही लेकर आ गए हम आपके पत्रों के उत्तर और पाक कला विशेषज्ञ नेहा दीपक शाह के साथ खास मुलाकात का दूसरा अंक।

0: दोस्तों, पिछले सप्ताह हमने आपकी मुलाकात एक कंटेंट क्रिएटर नेहा दीपक शाह से करवाई थी, जिन्होंने 2 सप्ताह के जापान प्रवास के दौरान जापानी व्यंजनों के स्वाद और जापान की संस्कृति को भोजन के जरिए जाना।
1: नेहा जी के साथ बातचीत को आगे बढ़ाते हुए हमने जापान की संस्कृति और लोगों के साथ हुए उनके मेलजोल और संस्मरण के बारे में कई सवाल किए। नेहा जी का मानना है कि जापानी लोग अपना काम बड़ी निपुणता से करते हैं, जो सब्जी सुधारने जैसी बातों में भी झलकता है। वे कहती हैं,
2: आई थिंक फूड इन जनरल कल्चर का बहुत बड़ा पार्ट है। पर्सनली मुझे जापानीज खाना काफ़ी अच्छा लगता है, बिकॉज बहुत ओवरपावरिंग फ्लेवर्स नहीं होते हैं, सटल होते हैं। कल्चर में शायद कोई जापान को बीट नहीं कर सकता। कल्चरली इमोशनली इतने ज़्यादा इवॉल्व हैं, जिस तरीके से जापानीज माइंड्स सोचते हैं बहुत अलग है। एंड यहाँ के जो शेफ्स हैं, आप उसमें देख सकते हैं कि उनके हाथ में इतनी ज़्यादा कला है, वो इतना बारीकी से काम करते हैं, वेदर इट इज़ इवन चॉपिंग स्प्रिंग अनियंस, इट्स जस्ट दैट ये बहुत परफेक्टली चीज़ों को करते हैं। यू नो, एवरीथिंग हैज़ टू बी वेरी प्रिसाइज, बहुत एकदम। आई थिंक इंडियन फूड थोड़ा सा फ्री फ्लोइंग है, हम थोड़ा सा एक चुटकी ये, थोड़ा सा ये, थोड़ा वो, मतलब कुछ बन जाता है। आई डोंट थिंक जापानीज खाना वैसा है, थोड़ा सा ये मेटिक्युलस है।
0: जी सही कहा, जापानी शेफ ही नहीं, आम जापानी को भी सब्जी सुधारते देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। इतनी सफाई और गति से सब्जी काटते हैं कि सचमुच कमाल है।
1: सही कहा, इतनी ज्यादा करीने से काटते हैं कि सब्जी का हर कतरा एक जैसा एक सार होता है, और ये सफाई लोगों के काम में ही नहीं हर तरफ दिखाई देती है। यहाँ तक कि दुनिया की सबसे बड़ी मछली मंडी में से एक टोक्यो में स्थित टोयोसु मंडी में भी ये दिखाई देती है। अपनी इस यात्रा के दौरान नेहा जी को इसे देखने का भी मौका मिला। वहाँ के अनुभव के बारे में वे कहती हैं,
2: टोयोसु फिश मार्केट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने एक डेडिकेटेड व्यूइंग लॉबी जैसी बना रखी है, एंड वहाँ से आप देखते हो, वेरी नाइस, वेरी क्लीन, सो क्लीन। वहाँ पे ऑक्शन होता है सुबह 5:30 बजे, एग्जैक्ट ऑक्शन स्टार्ट होता है, 7 बजे तक तो सब कुछ रैप अप हो जाता है वहाँ पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग, आई हैव बीन टू अ लॉट ऑफ इंडियन मंडीज, आई लव गोइंग टू मंडीज, लेकिन दिस वॉज क्वाइट अ ट्रीट टू वॉच, इन द सेंस कि जस्ट अगेन कितना ऑर्गेनाइज था। इट वॉज जीरो केओस, मतलब अंदर जाने के लिए मार्केट में ऑक्शन वाली जहाँ जगह है उसमें जाने के लिए आपको एक लाइसेंस चाहिए, कोई भी नहीं जा सकता, लाइसेंस चाहिए। सो ऑटोमेटिकली जब ये इतना ऑर्गेनाइज है तो अननेसेसरी क्राउड जो है वो एलिमिनेट हो जाता है।
0: सब चीजें व्यवस्थित होंगी तो हर काम बड़ी सुगमता से हो ही जाता है।
1: जी हाँ, और नेहा जी का मानना है कि यही सलीका यहाँ के लोगों की फितरत में भी है। तभी प्रबंधन की प्रमुख कार्य शैलियां जापानी है, और पूरी तन्मयता से काम करो तो हर चीज का रास्ता भी मिल ही जाता है। वे कहती हैं,
2: यहाँ बहुत सोल्यूशन ओरिएंटेड है। इफ यू लुक एट द बेस्ट एक्सलेंस practices in companies, whether it is the Kaizen system या फिर Six Sigma, ये सब जापान से आए हैं। सो यहाँ का जो excellence है हर चीज़ में है, बहुत solution oriented है। काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि जापान can be very confusing, you know, metro में travel करना ये वो सब कुछ। In all honesty, I feel it is the most straightforward. It is not at all confusing. So यहाँ पे मैंने literally देखा है कि at any point, suppose मैं अगर चल रही हूँ और मुझे इस point पे आके अगर confusion होगा कि मुझे left लेना है right लेना है, 100% and I mean 100 and I tested this like every time, सामने कहीं लिखा होगा कि which is the way to go. So you have to just be attentive in this country. So it's not at all confusing. यहाँ पे हर चीज़ बहुत clearly mentioned है।
0: और हाँ, कभी रास्ता भूल भी जाओ तो मदद के लिए कोई ना कोई तो मिल ही जाता है। लोग अपनी व्यस्तता भूलकर आपको पूरा रास्ता छोड़कर भी आएंगे, अक्सर ऐसा होता है। वैसे शंग्रीला जी, नेहा जी सोशल मीडिया पर रेसिपी सिखाने का काम करती हैं, एक युवा लड़की के रूप में उन्होंने रेसिपी कंटेंट बनाने का काम कैसे और कब शुरू किया?
1: आपने सही देखा, नेहा जी ने हमें बताया कि उन्हें बचपन से खाने और अलग अलग रेसिपी बनाने का शौक था। फिर वर्ष 2015 में खाने से संबंधित एक रियलिटी शो में वे रनर अप रहीं। लेकिन नेहा जी का कहना है कि टीवी शो से कहीं ज्यादा जो बात उनके जीवन में नया मोड़ लेकर आई थी वो थी कोविड महामारी। जब सब कुछ थम सा गया था और लोग अपने ही घरों में कैद हो गए थे। इस बारे में नेहा जी कहती हैं,
2: 2020 when COVID hit, that was the turning point in my life. And suddenly I had so much time to myself. I realized कि कोई help नहीं है, कुछ नहीं, खाना तो बनाना ही है। ऐसे ही बैठी होती थी घर पे and people would message me, अरे मोमोज की रेसिपी भेज दो, बताओ पिज्जा कैसे बनाते हैं, friends. And I realized कि अरे ये सब तो मुझे भी खाना है, you know, like suddenly I'm not eating like बाहर का खाना. And so I started cooking all of this and सो बहुत टाइम बाद मैं घर पे खाना बना रही थी एंड मैं रोज़ वो जो खाना बनाती थी उसकी फ़ोटो लेती थी एंड आई वुड पुट इट ऑन इंस्टाग्राम। मतलब इससे पहले मुझे लगता था व्हाई शुड आई मेक रेसिपीज़, इतनी सारी रेसिपीज़ तो ऑलरेडी है यूट्यूब पे, मेरी रेसिपी कौन देखेगा, ऑलरेडी है इतना कॉन्टेंट। इट वॉज़ नॉट ट्रू बट आई सॉ अ लॉट ऑफ पीपल। सो एक ह्यूमन इंट्रैक्शन जो इंस्टाग्राम पे होता है वो यूट्यूब पे नहीं होता। रिमेंबर मुझे इतने मैसेजेस आते थे फ्रॉम पीपल बिकॉज एवरीवन वाज सफरिंग इन कोविड इन सम वे ऑर द अदर। फॉर सम इट वॉज इमोशनल, किसी के लिए फाइनेंशियल, सबके लिए कुछ कुछ अलग था, सबका स्ट्रगल राइट। बट लाइक आई सेड, सबको एक चीज़ की ज़रूरत थी, वो था खाना एंड खाना ब्रिंग्स कम्फर्ट। सो गॉट अ लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम पीपल सेइंग दैट ओह यू नो योर रेसिपीज हैव रियली बीन हेल्पिंग मी। पीपल रोट दैट ओह योर रेसिपीज हैव बीन हेल्पिंग मी यू नो लाइक ओवरकम डिप्रेशन। सो मेनी ब्यूटिफुल मैसेजेस। एंड उसके बाद आई रिमेंबर वो करने के बाद व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियो कॉन्टेंट।
0: वाकई खुद के लिए खाना बनाना और आम लोगों को आसान तरीके से किसी व्यंजन की विधि समझाने में बहुत अंतर है,
1: और वो भी एक दो मिनट में पूरी विधि बताना।
0: सही है, सही है। क्या आने वाले समय में लोगों को जापान से प्रेरित रेसिपी भी देखने को मिलेगी?
1: इरादा तो यही है। इस बारे में नेहा जी कहती हैं,
2: जो मैं कंटेंट बनाती हूँ, जो मैं रेसिपीज बनाती हूँ, यूजुअली इट्स इंस्पिरेशन जो मैं यहाँ वहाँ से लेती हूँ, राइट। 100% ये जापान की ट्रिप के बाद यू विल सी अ लॉट ऑफ लाइक थिंग्स दैट हैव इंस्पायर्ड मी ऑन दिस ट्रिप। मुझे लगता है कि टोफू इज वन इंग्रेडिएंट। इन फैक्ट व्हाइल आई वाज हियर आई वाज रिसर्चिंग कि टोफू कैसे बनता है, काफ़ी अलग अलग सिल्किन, फर्म, एक्स्ट्रा फर्म, फ्रेश टोफू। इंडिया में जो टोफू का पर्सपेक्टिव है बहुत अलग है, लोगों को लगता है बहुत ब्लैंड है, बट सो इज पनीर। ऐसा तो नहीं है कि पनीर में कुछ फ्लेवर है, राइट। सो पनीर को भी हम इतने तरीके से पकाते हैं। सो आई प्रॉब्ली वॉन्ट टू लाइक एक्सपेरिमेंट विद टोफू एज एन इंग्रेडिएंट। एडमामे इज अनदर इंग्रेडिएंट। आई एम एक्चुअली वेरी फॉन्ड ऑफ मिसो। अगर आप मेरा कॉन्टेंट देखेंगे, इट रिवॉल्व्स अराउंड यू नो बैलेंस्ड मील्स। एंड मुझे लगता है एज अ वेजिटेरियन इंडिया इज प्रोटीन डेफिशेंट। सो आई फील लाइक अनफॉर्चुनेटली वेजिटेरियंस का खाना हमेशा बहुत कार्ब हैवी होता है, प्रोटीन डेफिशिएंट होता है। टोफू एडमामे ये दो इंग्रेडिएंट्स है जो शायद अगर हम ज़्यादा इसको अडॉप्ट कर सकें, वेजिटेरियंस के लिए इजी है, यू नो लाइक एडमामे इज सो सिमिलर टू मटर, राइट। सो उसको आप अपने खाने में बहुत ईजिली डाल सकते हैं। यू कैन मेक सो मेनी थिंग्स, यू कैन इवन मेक लाइक पुलाव विद इट या फ्राइड राइस एंड सो मेनी थिंग्स कैन बी मेड। ऐसे ही स्नैकिंग के लिए इतना अच्छा है इफ़ यू कंसिडर इट फ्रॉम द वेजिटेबल कैटेगरी या बीन कैटेगरी, वट एवर। इट्स दी ओनली वन विच इज़ अ कम्प्लीट प्रोटीन। मैंने ऑलमोस्ट एवरी डे यहाँ पे एडमामे खाया है। मैं इंडिया में भी रोज़ खाती हूँ बट यहाँ पे भी रोज़ खाया है। आई वॉन्ट टू मेक अ लॉट मोर ऑथेंटिक जैपनीज रेसिपीज वर्सेज लाइक इंडियनाइजिंग दम।
0: टोफू तो शाकाहारियों के लिए काफ़ी फायदेमंद है, प्रोटीन से भरपूर और कैलोरी भी बहुत कम। ये सोया मिल्क को फाड़कर बनाया जाता है। भारतीय आहार में टोफू शामिल किया जाए तो एक नया और पौष्टिक व्यंजन तैयार हो सकता है।
1: और एदामामे है सोयाबीन की कच्ची फलियां, जिन्हें नमक के पानी में उबालकर स्नैक के रूप में खाया जा सकता है। वहीं मिसो भी सोयाबीन से बना पेस्ट है जो तरह तरह के व्यंजनों को और स्वादिष्ट बना देता है।
0: ये अच्छी बात है कि जापान और भारत की सदियों पुरानी मैत्री अब आपसी स्वाद के आदान प्रदान का रूप भी लेगी, और ये दोस्ताना स्वाद के जरिए और गहरा होगा।
1: जी बिल्कुल, अपने कार्यक्रमों में जापानी भोजन का स्वाद और विधियों के जरिए हमारी भी कोशिश है कि लोग यहाँ की खाद्य संस्कृति को भी जानें, क्योंकि भोजन हर देश की संस्कृति का अहम हिस्सा होता है।
0: दोस्तों, नेहा दीपक शाह के साथ ये खास मुलाकात आपको कैसी लगी, हमें अपने पत्रों के जरिए जरूर बताएं। और देखिए, अब समय हो चला है श्रोताओं को फ्रीक्वेंसी बताने का, तो फटाफट नोट करें हमारी फ्रीक्वेंसी।
3: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्ट वेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।
0: कार्यक्रम चेरी के देश से में आपका फिर स्वागत है। शंकरला जी, जापानी भोजन के बारे में एक बात तो कहनी ही पड़ेगी कि ये बेहद स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। जापानी लोगों का दैनिक आहार जिसमें सुबह का नाश्ता हो या लंच डिनर, काफी संतुलित और पौष्टिक होता है। यहाँ लोग ज्यादा तला फला नहीं खाते हैं, मैं तो नहीं देखती हूँ।
1: जी, शायद तभी तो यहाँ बड़ी आयु के लोग भी अपना काम खुद ही करते दिख जाते हैं, और तभी यहाँ के लोगों की औसत आयु भी बहुत अधिक है। इसके अलावा बाजार में बिकने वाले खाद्य पदार्थों को लेकर भी नियम बहुत सख्त है यहाँ।
0: जी, यहाँ पर कन्वीनियंस स्टोर, जिन्हें जापान की आम बोलचाल में कुनबिनी कहते हैं, वहाँ पर बने बनाए भोजन के पैकेट, ओनिगिरी, सलाद और भी बहुत कुछ आसानी से मिल जाता है। वैसे हम जैसे कामकाजी व्यस्त लोगों के लिए ये तो वरदान है। मिलावट या खराब गुणवत्ता की चिंता किए बगैर निश्चिंत होकर हम उन्हें खरीद सकते हैं।
1: जी, मेरा भी रोज का आगेदाशी तोफू यानी हल्का सा तला हुआ तोफू और सलाद इन्हीं कंबिनी से आता है।
0: वैसे हमारे श्रोता मित्र सोच रहे होंगे कि हम बार बार तोफू, मिसो आदि का जिक्र कर रहे हैं, वे उन्हें कहाँ से लेकर आए। तो आपको याद दिलाएं कि वेबसाइट पर मौजूद आओ पकाएं जापानी खाना में बताई जा रही रेसिपी में आगेदाशी तोफू, मिसो सूप और भी बहुत कुछ व्यंजनों की विधियां पूरे विस्तार से बताई गई हैं।
1: तो आप अगर अपने मुंह का जायका बदलना चाहते हैं या कुछ नया खाने का मन हो तो हमारी वेबसाइट को खंगालिए। साथ ही समय समय पर इनकी लिंक हम फेसबुक पर भी साझा करते हैं। और नेहा जी ने जिस आगेदाशी तोफू का जिक्र किया है उस व्यंजन की विधि एक वीडियो के जरिए वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका शीर्षक है रीका का टोक्यो कुजीन, तोफू व्यंजन बनाने की 2 पौष्टिक सरल विधियां। इसे जरूर देखें।
0: अब इतनी तो मेहनत करनी ही होगी हमारे श्रोताओं को। वैसे तोफू भारत के दिल्ली, मुंबई, बंगलुरु जैसे महानगरों में आसानी से मिलने लगा है अब।
1: अरे महानगर ही नहीं, कई बड़े बड़े शहरों में भी उपलब्ध है। भारत में सोयाबीन की अच्छी पैदावार है और लोगों का रुझान इससे बनी चीजों की ओर बढ़ रहा है। और कमाईनी जी, मैं तो आटा सानते समय उसमें तोफू डाल देती हूँ। रोटी प्रोटीन से भरपूर और बहुत मुलायम और नर्म बनती है।
0: ओह, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, मैं भी यही कोशिश करती हूँ। जापानी खाना बनाने की कोशिश करें और जो बनाएं उसकी तस्वीर भी हमारे साथ हमारे श्रोता जरूर साझा करें।
1: लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखें कि जो भी खाना बनाएं उसे बेकार ना जाने दें।
0: सही कहा आपने, मेहनत करो और वो बेकार जाए तो दुख जरूर होगा।
1: वो तो है, लेकिन इससे पर्यावरण पर भी भारी असर होगा। जलवायु परिवर्तन पर NHK वर्ल्ड ने एक सीरीज इम्पैक्ट प्रसारित की है। इसके कुछ अंक हिंदी सबटाइटल के साथ वेबसाइट पर उपलब्ध है। नाम है प्रभाव, जलवायु संग बदलती दुनिया।
0: जी, NHK वर्ल्ड के दर्शकों के बीच ये सीरीज आजकल बहुत लोकप्रिय हो रही है, बहुत बढ़िया बनी हुई है और सोचने पर हमें मजबूर करती है। इसका एक अंक खाद्य कचरे के बारे में है। शीर्षक है खाद्य कचरा बढ़ाए वैश्विक तापमान।
1: जी, आज खाद्य कचरा वैश्विक तापमान वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। एक संस्था ने चेतावनी दी है कि भारत और रूस जैसे देशों में खाद्य कचरे के कारण बहुत अधिक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हो रहा है। इस अंक में इसी समस्या से जुड़ी जानकारी की पड़ताल की गई है।
0: मित्रों आप भी जरूर देखें। और श्रृंगला जी, जब हमने इस कार्यक्रम की लिंक फेसबुक पर साझा की थी तो कई लोगों ने अपने कमेंट्स में बहुत बढ़िया सुझाव दिए हैं। विजय गुप्ता लिखते हैं, खाद्य कचरा आज दुनिया की समस्या है, पर भारत की विशेष समस्या जिसकी आधी से ज्यादा आबादी भुखमरी की शिकार है और 80% से ज्यादा लोग कुपोषण और बीमारियों के शिकार हैं, फिर भी अन्न की सबसे ज्यादा बर्बादी का कलंक भारत पर है। अन्न की बर्बादी को रोकना ही मानवीय पहलू और मानवता का कार्य है। क्यों ना बर्बाद अन्न को 100% कंपोस्ट करके खेत की मिट्टी में डालने का एक अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाया जाए और सभी देशों की सरकार, राज्य और नगर पालिका की जिम्मेदारी तय हो।
1: विवेक छेत्री ने एक बहुत ही बढ़िया सुझाव दिया है। वे लिखते हैं कि अगर रसोई का कचरा कम है तो इससे वर्मी कल्चर किया जा सकता है और इससे बनी खाद पेड़ों में डाली जा सकती है या बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं।
0: श्याम कुमार गर्ग का सुझाव है, अगर फल सब्जी सड़ी गली नहीं है तो पशुओं को चारा दे सकते हैं। यही सुझाव अनमाना झा का भी है।
1: वाकई कमायनी जी, जलवायु परिवर्तन का असर हर जगह देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों हमने चीबा और होकुरिकू इलाके में मूसलाधार वर्षा का कहर देखा। वहीं तिब्बत में ग्लेशियर टूटने से नेपाल में अचानक आई बाढ़ में जान माल का यही भारी नुकसान हुआ। मृतकों में बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटक भी थे।
0: वाकई बहुत ही भीषण त्रासदी थी, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जलवायु परिवर्तन बहुत ही गंभीर समस्या है, हमें इसे और गंभीरता से लेना चाहिए। कितनी और तबाही हम देखना चाहते हैं, बहुत हो चुका, अब भी समय है, अब भी हम सचेत हो जाएं, संभल जाएं। जलवायु परिवर्तन की इस बढ़ती हुई तबाही को हमने कभी भी किसी भी तरीके से इसे रोकना ही है। हम अपनी तरफ से छोटा सा छोटा प्रयास करके भी इसमें अपना व्यक्तिगत योगदान कर सकते हैं।
1: जी जरूर। और मित्रों, आपको चरी के देश से कार्यक्रम का यह अंक कैसा लगा जरूर बताएं। नेहा दीपक शाह के साथ बातचीत से हमने जापान का एक अलग पहलू आपको दिखाया है। फिलहाल एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से अनुमति दीजिए अपनी सखी शांग्रिला जैन को
0: और कामायनी सिंह को।
1: सायोनारा, नमस्कार।